0: और म्यूजिक लवर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर मैं लाया हूँ। आप सुन रहे हैं रेडियो नैना पर निर्वाणा नाइट, 7 से 10 हमारा ये शो चलता है। एंड धर्म से एक बहुत ही खूबसूरत खबर आई है, जैसे मैंने मेंशन करा था, म्यूजिक लवर्स के लिए ये खबर है। काउंटी के 20वें ऐतिहासिक धर्म ब्रास फेस्टिवल का बीती रात रंगारंग गानों और लाइव स्ट्रीट बैंड के साथ परफॉर्मेंस हुआ है एंड बहुत ही शानदार जो है वो समापन हुआ है, मतलब एंड हुआ है। इस पूरे हफ्ते चले म्यूजिक मेले में हर उम्र के हजारों नेटिव लोग शामिल थे, जिसमें धर्म की सड़कों को जश्न के माहौल में डुबोए रखा था वाकई में। एंड जो नज़ारा था ना, म्यूजिकल नज़ारा जिसे हम कहेंगे, वो काफ़ी एक अलग लेवल पे था। बहुत सारे लोकल आर्टिस्ट ने भी यहाँ पे परफॉर्मेंस दी है एंड एक म्यूजिकल जो माहौल था वो बना था।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा पक्का देसी।

आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।

0: वेलकम बैक टू एवरीबॉडी। एंजॉय किया आपने ये गाना। और बिजनेस और रियल एस्टेट की बात करें तो रिसर्च ट्रायंगल पार्क आरटीपी के नए हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए आज सोमवार को भी आवेदनों की लाइन लगी हुई है। जी हाँ, आरटीपी 3.0 विजन फ्रेमवर्क के तहत पार्क के अंदर आवासीय कम्युनिटीज बनाने के लिए नए डेवलपर्स ने आज सुबह कई नए प्रस्ताव सबमिट किए हैं। आरटीपी जो है वो फुल टू ऐसा मैं कहूंगा कि एक नया ही स्टार्टअप यहाँ पे शुरू हो चुका है। नए सीईओ जोनाथन प्रूएट ने इस विजन को बहुत आगे बढ़ाते हुए कहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये काफ़ी अच्छा है, शानदार होने वाला है। मतलब टेक्नोलॉजी के साथ एंटरटेनमेंट का भी माध्यम आरटीपी 3.0 बनने वाला है। एंड जो मार्केट है उसमें इतने तेजी से उछाल आया है रियल एस्टेट के कि क्या कहूँ मैं, रातों रात तो आपको भी पता है।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM, HD4 101.9 FM, 1490 AM, रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: वेलकम बैक टू एवरीबॉडी। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट, 7 से 10 ही हमारा शो चलता है। तो कैरी शहर के एडमिनिस्ट्रेशन से आज की बड़ी अपडेट यह है कि स्टेट ऑडिट रिपोर्ट में पूर्व टाउन मैनेजर और कुछ कर्मचारियों पर लगे सरकारी पैसे की फिजूल खर्ची के आरोपों के बाद नई इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी ने आज सोमवार सुबह से फाइलों की जांच जो है वो और तेजी से कर दी है। काउंसिल ने साफ कहा है कि जनता के टैक्स के पैसों का दुरुपयोग करने वालों पर कड़ा एक्शन जो है वो लिया जाएगा। एंड जल्द ही हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में सिनारियो क्या था। एंड सोशल मीडिया पर भी ये कैंपेन बहुत ज़्यादा मात्रा में चल रहा है, तो लेट्स सी एक्शन क्या होती है, क्या प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उन्हें मिटाया कैसे जा सकता है, ये तो डेफिनेटली हमें वेरी सून पता चलेगा।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM।

एंजॉय किया। आप सभी ने आप सुन रहे हैं रेडियो नारा पर निर्वाणा नाइट्स एंड ग्लेनवुड साउथ में हुड़दंग रोकने के लिए पुलिस का मंडे गश्ती दल। जी हाँ, वीकेंड के बाद मंडे को भी शहर के ग्लेनवुड साउथ और ब्रियर क्रीक जैसे हॉटस्पॉट पर सुरक्षा व्यवस्था को जो है वो एकदम टाइट तरीके से बना के रखा है। पुलिस की विशेष रियल टाइम क्राइम यूनिट आज भी उन सभी सोशल मीडिया ग्रुप्स को ट्रैक कर रही है जहां अचानक युवाओं की भीड़ इकट्ठा करने की प्लानिंग की जाती है ताकि शहर की जो भी खुशहाल जिंदगी है वो बरकरार रहे। हमारी पुलिस हमारे लिए कितनी मेहनत करती है एंड जो भी करती है ये जनता के हित में ही करती है, तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप जो है वो लिया गया है प्रशासन द्वारा एंड ये काफ़ी अच्छी बात है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा पक्का।

0: जी आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पंडितवाना नाइट्स एंड लोकल खबरों के इस आखिरी हिस्से में बात करेंगे आज के मौसम की। सुबह धूप निकलने की वजह से सेंट्रल एनसी में उमस और गर्मी काफी ज्यादा प्रमाण में बढ़ गई है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि आज रात को गरज चमक के साथ फिर से हल्की बौछारें पड़ने की संभावना है, इसलिए बाहर निकलते वक्त छाता और पानी की बोतल साथ रखना ना भूलें। मतलब गर्मी साथ में बारिश भी, ये दोनों मौसम का जो कॉम्बिनेशन है वो आजकल हमें दिखाई दे रहा है। एंड पानी जो है वो भरपूर मात्रा में पीना चाहिए, बाहर का जंक फूड जो है वो टालना चाहिए, एंड मौसम जो है वो बदलने वाला है, तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। एंड जो भी बदलाव आने वाले हैं आपका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है यार, क्योंकि ख्याल अगर नहीं रखोगे तो फिर वही बात जो आपको पता है।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 एफएम HD4 101.9 एफएम 1490 AM रेडियो नायरा पक्का देसी पटका लगा।

0: एंजॉय किया आपने गाना। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्मला नाइट्स, एंड बात करते हैं कि जो भी चीज़ें हो रही है, इट्स लाइक मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों की यही समस्या है कि ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी जो है वो बढ़ रही है। मतलब क्या हो रहा है कि एक्सपेक्टेशन जो है वो काफ़ी बढ़ रही है। एक्सपेक्टेशन को बढ़ाना चाहिए, लेकिन एक्सपेक्टेशन को बढ़ाने के चक्कर में आप जो आपका ये ओवरथिंकिंग बढ़ा रहे हैं वो सही नहीं है। हर चीज़ टाइम से होती है, अगर आप मेहनत करते हो, कंसिस्टेंसी रखते हो तो होती है, लेकिन रातों रात तो इट्स डिफ़िकल्ट ना यार कि कैसे क्या सब कुछ हो जाएगा। तो उम्मीदें थोड़ी कम रखनी चाहिए एंड अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए। अगर आप अपने आप पे भरोसा रखते हैं तो डेफिनेटली यार चीजें तो अच्छी होनी ही है।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा, पक्का देसी।

लगता था नशे में तुझे भूल जाऊंगा, मुझे लगता था नशे में तुझे भूल जाऊंगा, तू और याद आई तो लगा ऐसा नहीं करते। तू और शराब दोनों एक जैसे हो, दोनों नशा करते हैं, वफा नहीं करते।

0: बहुत सारे लिसनर्स मुझसे पूछा करते हैं कि अभी मौसम जो है वो बदल रहा है तो क्या करें। तो मेरी एक सिंपल सलाह है भाई, आप जब भी मॉर्निंग में उठते हो तो थोड़ा सा पानी को गर्म करो एंड गर्म पानी को पीकर दिन की शुरुआत करो, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करो। ये करना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो जो मौसम में बदलाव आ रहा है वो ऑलरेडी आप कम कर रहे हो, क्या करके थोड़ा गर्म पानी पी के इम्यूनिटी जो है वो आपकी बढ़ा रहे हो एंड इट्स लाइक बहुत अच्छा है। और कुछ भी नहीं करना है ना यार, एक गर्म पानी करने को आपको टाइम ही कितना लग रहा है, इट विल हार्डली टेक सम मिनट्स। ओके, तो ये चीज़ आप करते हैं, आप थोड़ी हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद यू नो इट्स लाइक थोड़ा माइंड सेट को अच्छा बना के चलना है, दैट्स इट। और खबरदारी रखनी है कि पानी जो है वो भरपूर मात्रा में आपको पीना है, काम के चक्कर में पानी पीना भूलिएगा मत।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा।

0: Not every restaurant becomes an experience, but Soul Flavorscape of India is a journey through taste, tradition, and unforgettable flavors.
1: From crispy Delhi-style aloo tikki chaat, flavorful samosa chaat, to the signature Soul Dal Bukhara.
0: Enjoy fresh sizzling veg and non-veg starters paired perfectly with oven-fresh chur chur naan made with love and fresh ingredients.
1: Planning your birthday, wedding, graduation party, corporate gathering, or family celebration?
0: Ask about customized catering menus at reasonable prices. Crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
1: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
0: Whether it's dinner with family, chai with friends, or your next big event. Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors. Experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
2: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक इन चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरी डे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करे 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.
3: कत्ल करती है निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो. हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना.

0: वेलकम बैक टू एवरीबॉडी। एंजॉय किया आपने ये गाना था, वाकई में काफी ब्यूटीफुल। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स। और जैसे कि मैंने आप सभी को पहले ही कहा था कि आप अगर विशाल शेखर के बहुत बड़े फैन हैं तो टिकटें जो है कॉन्सर्ट की वो जल्द से जल्द बुक करें, वरना ये हो जाएगी हाउसफुल। और वैसे ही हुआ है हमारे ट्रायंगल एरिया में जो विशाल शेखर का म्यूजिकल लाइव कॉन्सर्ट होने वाला है, आज सोमवार शाम तक लगभग पूरी तरह टिकटें जो है वो बिक जाएगी और शो तो हाउसफुल होने वाला है आज रात का। तो मतलब ये शो को लेकर बहुत सारी चर्चाएं भी चल रही है एंड फैंस में ज़बरदस्त क्रेज जो है वो बना हुआ है और लोग आज रात एक यादगार म्यूजिकल नाइट के लिए पूरी तरह तैयार है। इट्स लाइक ये तो बहुत बड़ी मतलब खुशखबरी है एंड मज़ा आने वाला है।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 एफएम HD4 101.9 एफएम 1490 AM रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: वेलकम बैक टू एवरीबडी। मैं ये कह रहा था कि काजल अग्रवाल की कोर्टरूम ड्रामा फिल्म द इंडिया स्टोरी की कहानी को लेकर आज मेकर्स ने बड़ा खुलासा किया है कि ये जो मूवी है ये काफ़ी बेहतरीन होने वाली है। एंड रिलीज डेट के बारे में तो अभी मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन जल्द से जल्द रिलीज़ हो जाएगी। एंड ये फिल्म हमारे खाने पीने की चीज़ों में इस्तेमाल होने वाले खतरनाक कीटकनाशकों और फूड सेफ्टी से जुड़े एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट घोटाले को उजागर करने वाली है। ये मतलब एक नया सेगमेंट रहने वाला है जो आज के समाज की कहानी है, कड़वी सच्चाई है, बड़े पर्दे पर ये पेश करी जाएंगी। एंड कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है ना यार, मतलब फूड में जो सेफ्टी रखनी चाहिए वो सेफ्टी वाकई में क्या रखी जाती है, क्या क्या चीजें चलती है, ये जो बातें ये शो की जाएगी।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 एफएम HD4 101.9 एफएम 1490 AM रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: एंजॉय किया आप सभी ने गाना। आप सुन रहे हैं रेडियो नारा पर निर्वाणा नाइट्स एंड मैं हूं सबके दिलों का चिराग। मेरा नाम है आज पराग। 7 से 10 में रहता हूं आपके साथ, मिटाता हूं आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूं आपके मूड को रिफ्रेश। मैं यही कह रहा था कि यार थैंक यू सो मच रेडियो नायरा एंड निर्वाणा नाइट्स को इतना सारा प्यार देने के लिए। आप हमारे इस रेडियो नायरा के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से एंड एप्पल प्ले स्टोर से। आपको कुछ भी नहीं करना है, जाना है, टाइप करना है रेडियो नायरा एंड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। आप हमारे इस एप्लीकेशन के माध्यम से सुन सकते हैं हमारे आरजेस के बहुत ही एंटरटेनमेंट से भरपूर शो एंड एंजॉय कर सकते हैं अनलिमिटेड म्यूजिक। दुनिया के किसी भी कोने में आप हमारे रेडियो नायरा के ऐप को सुन सकते हैं, लेकिन शर्त बस इतनी है कि आपका जो नेटवर्क है वो नेटवर्क काफ़ी अच्छा हो जाना चाहिए, है ना। वेल एंजॉय करते हैं ये अगला गाना।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पंडिरमदा नाइट 7 से 10 हमारा ये शो चलता है और ये वक्त काफ़ी बढ़िया है, मतलब भीड़ कम है, टिमटिमाते लाइट है, बहुत सारे लोग अपने घर पर पहुंच चुके हैं, डिनर कर रहे हैं एंड बहुत सारे लोगों को डिनर के बाद की जो मीठे की क्रेविंग है वो भी हो रही है। वेल, मीठे की क्रेविंग से याद आया कि क्या हो गया आपके जिम का जो आपने सब्सक्रिप्शन तो लेके रखा है लेकिन गए नहीं है। नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन हम लोगों को अच्छे से यूज़ करते आता है, लेकिन जिम का जो मेंबरशिप रहता है उसका क्या, उसको भी अगर हम इतने रेगुलरली यूज़ करेंगे तो क्या ही मज़ा आ जाएगा। यही कह रहा था कि 7 से 10 का ये टाइम आप लोगों के साथ बात करते करते कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। और बाहर का मौसम देखो तो काफ़ी शानदार सुहाना हो चुका है, ये चलती हवाएं मतलब क्या ही बात है ना। कल मिलूंगा आपको इसी वक्त इसी शो पर, तब तक के लिए गुड नाइट।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 एफएम HD4 101.9 एफएम 1490 AM रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

WCMC-FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.

0: लिविंग मींस इंडियन ट्रेडिशन. सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा ओनली ऑन रेडियो नायरा.
1: Radio Nara 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM. Pakka Desi, Pakka Local.
2: Here we go.

0: साल की शुरुआत सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स के साथ। ट्यून इन टू रेडियो नायरा 2025 की परफेक्ट शुरुआत।
1: नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोक।

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490.

0: नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।
1: आप सुन रहे हैं नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM, पक्का देसी, पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल नायरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 4090 AM पक्का देसी पक्का लोकल रेडियो नायरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 4090 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 एफएम 99.9 एफएम एसडी 4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल। आप सुन रहे हैं नहरा 101.9 एफएम 99.9 एफएम एसडी 4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

0: हेल्दी लिविंग मीन्स इंडियन ट्रेडिशन. सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा ओनली ऑन रेडियो नायरा.
1: नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM. पक्का देसी पक्का लो.

Radio Nara 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, Pakka Desi Pakka Local.

0: लिविंग मींस इंडियन ट्रेडिशन. सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा ओनली ऑन रेडियो नायरा.
1: आप सुन रहे हैं नायरा 101.9 एफएम, 99.9 एफएम, एसडी 44 1090 एएम. पक्का देसी पक्का लोक.

0: साल की शुरुआत सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स के साथ। ट्यून इन टू रेडियो नायरा 2025 की परफेक्ट शुरुआत।
1: रेडियो नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।
1: नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल। आप सुन रहे हैं नायरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

0: सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 एफएम 99.9 एफएम एसडी 4 1490 एएम पक्का देसी पक्का लोकल नहरा 101.9 एफएम 99.9 एफएम एसडी 4 1490 एएम पक्का देसी पक्का लोकल।
1: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क की मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

0: हेल्दी लिविंग मीन्स इंडियन ट्रेडिशन. सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा ओनली ऑन रेडियो नायरा.
1: Radio Nara 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM. Pakka Desi, Pakka Local.

रेडियो नायरा पर बजेगा सिर्फ बेस्ट हिट्स। आप सुन रहे हैं नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 440 90 AM, पक्का देसी पक्का लोक।

0: हेल्दी लिविंग मीन्स इंडियन ट्रेडिशन. सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा ओनली ऑन रेडियो नायरा.
1: नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM. पक्का देसी पक्का लोकल.

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490.

बजेगा सिर्फ बेस्ट हिट्स रेडियो नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

0: साल की शुरुआत सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स के साथ. ट्यून इन टू रेडियो नायरा 2025 की परफेक्ट शुरुआत.
1: आप सुन रहे हैं नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 41490 AM. पक्का देसी पक्का लोकल.
2: King Khan, you're your honey singer.

0: नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।
1: Do you desire for contemporary and classic jewelry designs to fit every occasion? Khanna and Sons Jewelers has you covered for all your jewelry needs. We craft the purest 22 karat gold and 18 karat dazzling diamonds jewelry with top quality and finish. We offer best value in jewelry along with top craftsmanship and fair making charges. Gold buyback, easy 12 months interest free financing available. Come, see us for all your jewelry needs at Khanna and Sons Jewelers in Cary, North Carolina or call us at 9193883.
2: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक इन चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।
3: 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी, पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 440 90 AM, पक्का देसी पक्का लोक।

WMCFM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham.

0: सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 1490 AM. पक्का देसी, पक्का लोकल.
1: Not every restaurant becomes an experience, but Soul Flavorscape of India is a journey through taste, tradition, and unforgettable flavors.
2: From crispy Delhi-style aloo tikki chaat, flavorful samosa chaat, to the signature Soul Dal Bukhara.
1: Enjoy fresh sizzling veg and non-veg starters paired perfectly with oven-fresh chur chur naan made with love and fresh ingredients.
2: Planning your birthday, wedding, graduation party, corporate gathering, or family celebration?
1: Ask about customized catering menus at reasonable prices. Crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
2: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
1: Whether it's dinner with family, chai with friends, or your next big event. Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors. Experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
3: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्यूल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी

सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल रेडियो नहरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

0: लिविंग मींस इंडियन ट्रेडिशन. सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा, ओनली ऑन रेडियो नायरा.
1: नॉट एवरी रेस्टोरेंट बिकम्स एन एक्सपीरियंस, बट सोल फ्लेवरस्केप ऑफ इंडिया इज अ जर्नी थ्रू टेस्ट, ट्रेडिशन एंड अनफॉरगेटेबल फ्लेवर्स.
2: फ्रॉम क्रिस्पी दिल्ली स्टाइल आलू टिक्की चाट, फ्लेवरफुल समोसा चाट, टू द सिग्नेचर सोल दाल बुखारा.
1: Enjoy fresh sizzling veg and non-veg starters paired perfectly with oven-fresh chur chur naan made with love and fresh ingredients.
2: Planning your birthday, wedding, graduation party, corporate gathering or family celebration?
1: Ask about customized catering menus at reasonable prices. Crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
2: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
1: Whether it's dinner with family, chai with friends, or your next big event.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

Laudi, laudi.

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490

Good morning. Hello. Hi. Namaste. I am back on 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu. Naira se main hu aapki apni Monica aur aap sun rahe hain Triangle Dunes and Talk. Well, good morning. Morning hai ji aur wahi apna purana routine shuru hai. Ghar se office, travel, work aur bhai kaam ka tension. But thinking not, aapke day ko relaxing banane ke liye main aapko Triangle ki special masaledar khabrein sunane wali hu. और ऑब्वियसली मस्ती तो कंटिन्यू चलते रहने वाली है. वैसे अभी तक ढेर सारी गपशप चल रही थी आपकी हमारे दोस्तों के साथ और नाउ मेरी बारी है आपको एंटरटेन करने की. सो गेट रेडी, मैं ढेर सारी इवेंट अपडेट आपको देने वाली हूँ और हमारे ट्रायंगल में क्या हलचल होने वाली है सब कुछ आपको बताने वाली हूँ. इसीलिए कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा. पका देसी पका लोकल.

आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक इन चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।

0: इस माहौल गाने के बाद वन मोर टाइम वेलकम है जी ऑन 101.9 एफएम 99.9 एफएम एचडी 4 49 एएम 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूं आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टू सेंटर।
1: वेल हमारे ट्रायंगल में बहुत जल्दी पीच पाथवे सेलिब्रेट होने वाला है। वी आर हाइडिंग 20 क्राफ्टेड ग्लास पीचेस अलोंग ट्रायल थ्रू आउट द सैंड हिल एंड इट्स योर जॉब टू फाइंड देम। Each glass of peach is one of a kind of treasure waiting to be discovered, created by friends at Starbucks. List up your hiking shoes, grab your friend or family, and hit the trail for the this fun. Free adventure celebrating the beauty of nature and spirit of summer in Sandhill. Each day on our live social media will announce trail for the hunt, so stay tuned. Filhal ke liye jaiye nahi, sunte rahiye Monica ke saath Radio Nayra, Pakka Desi, Pakka Local.

धमाल की दारदारी के बाद वन मोर टाइम वेलकम है जी 101.9 FM, 99.9 FM, LG4 49 AM, 99.9 FM, LG3 for Telugu, Naira, same hour, aapke apni Monica aur aap sun rahe hain Triangle Tools and Talk. बहुत जल्दी विंडो वर्ल्ड 415.640 स्पीडवे सेलिब्रेट होने वाला है. डोंट मिस द विंडो वर्ल्ड 450 एट नॉट Greensboro Speedway. Experience thrilling NASCAR action live. Feel the roar of engine and pure excitement of high-stakes racing. Point racing is back at North Greensboro. It's summertime time and spectacles at one of the NASCAR's most historic tracks. Don't miss epic tailgates and high-stakes racing among the NASCAR's elite driving and team. The race is on. Multi-platinum country hitmaker is waiting for you. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुन रही है मोनिका के साथ रेडियो नाइन पक्का देखिए पक्का लोकल.

ये रोमांटिक गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu Naira से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्राइंगल टूल्स एंड टॉक वन खूबसूरती जो नजरों में नहीं तो दिल में बस जाए। पेश है 92.5 सिल्वर ज्वेलरी का शानदार कलेक्शन जिसमें है 22 कैरेट गोल्ड प्लेटिंग की रॉयल चमक और डिजाइन में छुपी है बारीकी और प्रीशियस और सेमी प्रीशियस पत्थरों की अनोखी दमक। चाहे शादी हो या खास दिन हो या कोई त्योहार हो हर मौके पर आपको दे एक एलिगेंट रॉयल लुक क्योंकि आप सिर्फ ज्वेलरी नहीं पहनते हैं आप पहनती हैं अपनी खुद की पहचान। 9 जेम्स ज्वेलरी जहां हर गहना बनाता है आपकी खूबसूरती की पहचान। बुक ओनली बाय अपॉइंटमेंट 9 जेम्स ज्वेलरी वेस्ट कैरी 27519। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं +1 214 699 9454। फिलहाल कहीं जाइए या नहीं सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा पक्का देसी पक्का लोकल।

WCMC-FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490.

0: Naira 101.9 FM, Raleigh, Durham. Also available on 99.9 FM, HD4 and 1490 AM. Pakka Desi. 99.9 Naira me kho jao, Pakka Desi.
1: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याल दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

ये अमेजिंग गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 एफएम, 99.9 एफएम HD4 फॉर 90 एएम एंड 99.9 एफएम HD3 फॉर तेलुगु दायरा से। मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल डून सन टॉक। पता है बहुत थके आप सुबह सुबह ये वर्कलोड देखकर, बट डोंट वरी, आपको रिलैक्स फील करने के लिए ढेर सारी मस्ती कंटिन्यू रहने वाली है। वैसे आपने कुछ नोटिस किया क्या? नहीं ना, हम बातें और मस्ती करते करते सेकेंड आवर में प्रवेश कर चुके हैं और स्टिल हमारी बातें कंटिन्यू रहने वाली है। वेल, आपके साथ बातें और मस्ती तो कंटिन्यू चलते रहने वाली है, बट हमारे ट्रायंगल में क्या हलचल हो रही है, कहाँ क्या होने वाला है, कौन से इवेंट होने वाले हैं, सब कुछ आपको बताने वाली हूँ और ढेर सारे धमाकेदार गाने भी बजते रहने वाले हैं। इसीलिए कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नाइट ऑफ पक्का देसी पक्का लोकल।

0: desire for contemporary and classic jewelry designs to fit every occasion? Khanna and Sons Jewelers has you covered for all your jewelry needs. We craft the purest 22 karat gold and 18 karat dazzling diamonds jewelry with top quality and finish. We offer best value in jewelry along with top craftsmanship and fair making charges. Gold buyback, easy 12 months interest refinancing available. Come see us for all your jewelry needs at Khanna and Sons Jewelers in Cary, North Carolina, or call us at 919-388-3888.
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करे 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.

ये माइंड ब्लोइंग गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu Naira Same. मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्राइंगल टून सेंटर. वेल माय ट्राइंगल में फोर्थ फ्राइडे इन ट्राइम सेलिब्रेट होने वाला है. जॉइन अस फॉर द टीडी इज फोर्थ फ्राइडे इन जुलाई एंड गेट रेडी टू डांस एंड टैगिंग ऑन द स्क्वायर. The fabulous Jewels will be performing live at the Plaza. Slip into the rhythm and Carolina Shags, a smooth, easygoing partner dance on right. Here in the Southern property, match the beach music in good beat. Whether you are a seasoned dancer or just want to try, the square will be filled with the friendly faces, lively tune, and plenty of fun. Come out, grab and partner, and let the music move to you. Lal kahi jaiye gani, sundariye Monica ke saath Radio Naira, pata desi, pata local.

Awesome Blossom Ghana, aapne suna on 101.9 FM, 99.9 FM, LG4, 49 AM and 99.9 FM, LG3 for Telugu, Naira se. Main hoon aapki apni Monica aur aap sun rahe hain Triangle Rooms and Talk. हमारे ट्रायंगल में जॉन पार्डी इन कॉन्सर्ट सेलिब्रेट होने वाला है. कंट्री म्यूजिक स्टार जॉन पार्डी इज ब्रिंगिंग हिज सिग्नेचर हॉन्की टॉन्क एनर्जी टू द किड रिवर स्टेडियम ऑन जुलाई. कांट मिस द नाइट अंडर द लाइट नोन एज मिस्टर सैटरडे नाइट. पार्डी इज सेट डिलीवर एन अनफॉरगेटेबल शो पैक्ड विद द चार्ट टॉपिंग एंड टॉपिंग इट इज हाई एंड एनर्जी परफॉर्मेंसेस. Whether you are backbone in wound for the summer or just looking for the perfect night out, this is your excuse to grab your friend and make it night to remember. मजा आने वाला है. इसकी और जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट जाके चेक कर सकते हैं. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नाइन. पक्का देसी, पक्का लोकल.

अमेजिंग गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 एफएम, 99.9 एफएम एचडी 4 फॉर 90 एएम एंड 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु। नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टून्स एंड टॉक। वेल मॉरिसले रेडी हो जाओ, आपका नया हैंगआउट स्पॉट आ रहा है। इंट्रोड्यूसिंग रच्चा बांडा फूड ट्रैक, ऑथेंटिक इंडियन स्ट्रीट फूड का असली स्वाद अब आपके शहर में। गर्मा गर्म समोसे, क्रिस्पी डोसा, चपाती चाट एंड फ्लेवर जो सीधा दिल तक जाए। ये सिर्फ फूड नहीं, ये है घर जैसा टेस्ट स्वीट वाले ट्विस्ट में। ग्रैंड ओपनिंग स्पेशल, आओ और पाओ एक सरप्राइज ट्रीट ऑन द हाउस। दोस्तों के साथ चिल करो, फैमिली के साथ एंजॉय करो या खुद को ट्रीट दो, क्योंकि राचा बांडा में है हर बाइट फील लाइक होम। नाउ अराइविंग इन मॉरिस विले, कमिंग सून राचा बांडा, जहाँ टेस्ट भी मस्त और वाइब भी बेस्ट है। फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: गाना खत्म।
1: ये ब्यूटीफुल गाना आप में सुना 101.9 FM, 99.9 FM HD4, 49 AM एंड 99.9 FM HD3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं फाइनल रूल्स एंड टॉक। विलियमर ट्रायंगल में बहुत जल्दी ग्रासी क्रीक एंड जेम मिनरल शो होने वाला है। एक्सप्लोर अ वाइब्रेंट वीक लॉन्ग आउटडोर शोकेसेस ऑफ जेम मिनरल फॉसिल ज्वेलरी एंड लैपिडरी सप्लाई एट द ग्रीसी क्रीक मिनरल एंड जेम शो इन स्प्रूस पाइन। With more than 60 vendors from around the world, this family-friendly event offers something for collector and enthusiasts alike, from stunning gemstones to laboratory tools to unique specimens. Hosted by Braver, Fire and Refuse to support local equipment purchase, the show features free admission and parking on site food and open to all ages. मजा आने वाला है, मिस मत करिए, जरूर एंजॉय करिए। फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

वेलकम है ऑन 101.9 एफएम 99.9 एफएम एचडी 4 49 एएम 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूं आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्राइंगल टून्स एंड टॉक कहां धारा मैंने आपसे की एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं होगी। देखा बातों बातों में थर्ड आर में प्रवेश कर गए हैं और स्टिल हमारी बातें कंटिन्यू रहने वाली है। ढेर सारी मसालेदार खबरें ट्रायंगल की कुछ अपडेट्स मैं आपको बताने वाली हूँ, पर अगर आप मुझसे बातें करना चाहते हैं, कुछ कहानियाँ कुछ किस्से शेयर करना चाहते हैं या किसी लव्ड वन को आप बर्थडे विश करना चाहते हैं या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं ऑन 9192944800 पर और सुन सकते हैं ओनली ऑन रेडियो नायरा पर। फिलहाल और एक चाय का कप तैयार कर लीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: Not every restaurant becomes an experience, but Soul Flavorscape of India is a journey through taste, tradition, and unforgettable flavors.
1: From crispy Delhi-style aloo tikki chaat, flavorful samosa chaat, to the signature Soul Dal Bukhara.
0: Enjoy fresh sizzling veg and non-veg starters paired perfectly with oven-fresh chur chur naan made with love and fresh ingredients.
1: Planning your birthday, wedding, graduation party, corporate gathering, or family celebration?
0: Ask about customized catering menus at reasonable prices, crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
1: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
0: Whether it's dinner with family, chai with friends, or your next big event, Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors, experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
2: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरी डे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.

ये रोमांटिक गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 49 AM, 99.9 FM, SD34, तेलुगु, नायरा फेम है। हूँ आपके अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं फाइनल रूल्स एंड टॉक। हमारे ट्रायंगल में 2016 इंटरनेशनल ब्लैक थिएटर फेस्टिवल सेलिब्रेट होने वाला है। इंटरनेशनल ब्लैक थिएटर फेस्टिवल IBTF रोल्स आउट द पर्पल कार्पेट एवरी अदर समर, ट्रांसफॉर्मिंग विंस्टन सलेम इनटू द मेगा परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर विद मोर देन 120 परफॉर्मेंसेस इन नंबर ऑफ द सिटी वेन्यूज। Artists, audiences and industry leaders from across the globe unite for an electrifying week through many stage production, engaging program and cultural exchange. Main stage production ticket will be announced and available for purchase. It's all start. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, इनकी और जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट जाके चेक कर सकते हैं और सुन सकते हैं ओनली ऑन रेडियो नायरा पर। पक्का देसी, पक्का लोकल।

0: गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 एफएम, 99.9 एफएम HD4 फॉर द 90 एएम एंड 99.9 एफएम HD3 फॉर तेलुगु नायरा से। मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल डोंट टॉक। वेल, हमारे ट्रायंगल में ड्रॉविंग रॉक चैरिटी हॉर्स शो हंटर जंपर फोर्थ डिवीजन सेलिब्रेट होने वाला है। द हंटर जंपर डिवीजन ऑफ ड्रॉविंग रॉक चैरिटी हॉर्सेस शो फोकसेस ऑन फीट ऑफ एलिजिबिलिटी and strength with the course jump of the turn that horses and riders have to navigate. This spectacular part of the show serve as preliminaries and final that show shortly after. Participants decorate their stable for added flair. Food truck will be offered delicious treat and vendor their theme wares. मजा आने वाला है, मिस मत करिए, जरूर एंजॉय करिए। फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पता देसी पता लोकल।
1: गेट रेडी फॉर डोसा बंडी, डिस्कवर आवर सिग्नेचर वैरायटी डोसास इंक्लूडिंग कलरफुल कैरेट डोसा, बीटरूट डोसा एंड मोर, मेड विद फ्रेश नेचुरल वेजिटेबल्स एंड पैक्ड विद फ्लेवर। Refresh your day with our cold pressed juices and enjoy our delicious sandwiches made with fresh vegetables, paneer and homemade sauces. At Dosa Bandi, every dish is carefully prepared with fresh ingredients to nourish your body and delight your taste buds. Join us every Saturday and Sunday from 8:30 a.m. to 2 p.m. and Wednesday through Friday from 5 p.m. to 10 p.m. We look forward to welcoming you
2: to 4101 NC Highway 55, Cary, North Carolina 27519.
3: Dosa Bandi, authentic flavors, inspiring journeys made with love.

0: दिल मेरा पत्थर का
1: ब्रेक नहीं कर सकती।
0: गाने हेटरों के मुंह पर जाके बजे बूम, क्लियर है विजन मेरी यारों नी नो जूम। ऋतिक नहीं फिर भी मचे की धूम, दोनों हाथ उठा के हवा में बेबी घूम।

था ना एक नंबर, मुझे तो मजा आ गया, आपको भी अच्छा लगा ना। वेल 101.9 FM 99.9 FM HD4 49 AM 99.9 FM HD3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल ड्यून्स एंड टॉक। लगता है मैं अभी अभी तो आई थी और अभी कहाँ जाने का वक्त हो चला है, और फिकर नॉट, आपके एंटरटेनमेंट में और मस्ती में कोई कमी नहीं होने वाली। ये रेडियो नायरा का और मेरा पक्का पक्का आपसे वादा है, हमारे होस्ट और मैं आपको साथ में एंटरटेन करते रहने वाले हैं on 101.9 FM 99.9 FM HD4 49 AM 99.9 FM HD3 for Telugu Radio Naira सुन रहे हैं आप, या आप प्ले स्टोर जाके हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं हमारे साथ। वेल कल फिर मुलाकात होगी इसी वक्त इसी समय ओनली ऑन ट्रायंगल ट्यून्स एंड टॉक पर ट्रायंगल की स्पेशल मसालेदार धमाकेदार खबरों के साथ। वेल अगला गाना स्पेशल आपके लिए बजने वाला है, कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल। एंजॉय योर डे, बाय बाय।

दिल्ली में जो इस वक्त इंडिया में जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हो रहा है, वो इतने बड़े स्केल पे जा चुका है, लाइक इट्स नो कमिंग बैक। दिस इज बॉलीवुड ब्लिस विद मी भारती ऑन योर ट्यून फ्रिक्वेंसी नायरा। यू नो स्वरा भास्कर्स हस्बैंड एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट फहाद अहमद वाज डिटेन्ड बाय मुंबई पुलिस ड्यूरिंग अ प्रोटेस्ट एट चैत्यभूमि इन दादर ऑन जुलाई 20। शेयरिंग अ वीडियो ऑफ द डिटेंशन ऑन इंस्टाग्राम, द एक्ट्रेस कॉल्ड इट अ शेमफुल स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड क्वेश्चन द स्टेट ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। फहाद, हु वाज टेकन टू माहिम पुलिस स्टेशन अलॉन्ग विद अदर प्रोटेस्टर्स, वाज रिलीज लेटर द सेम इवनिंग एट अराउंड 8 PM। यू गेट द आइडिया, लाइक क्या हो रहा है इतना, मतलब लाठी चार्ज, डिटेंशन, अरेस्ट, ये सारी चीज़ें, बहुत कुछ। आई विल लेट यू नो अबाउट दिस टू, एंड बॉलीवुड बातें तो होती रहेंगी।

0: Badauria, Alexander Noel and Sanvi Meghana all performing live in one spectacular show. Mark your calendars, Sunday, August 9th in Raleigh, North Carolina. Bring your family, bring your friends and be part of the biggest Pan India dance celebration of the year. Don't miss Prabhudeva live in Raleigh.
1: Presented by Fusion Vibes and Lime and Lemon Indian Grill. Media partner Radio Naira, your Indian community media network.
0: Prabhudeva live Sunday, August 9th in Raleigh, North Carolina. One legend, one stage, one unforgettable night.
2: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए
3: तो 99.9 FM SD4 4090 AM पक्का देसी पक्का लोका.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल। आप सुन रहे हैं नहरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

Mira 101.9 FM Raleigh Durham. Also available on 99.9 FM HD4 and 1490 AM Pakka Desi. 99.9. हेलो हेलो हेलो पीपल, प्रणाम, नमस्ते, आदाब, शस्त्रकाल, केम छो एंड अ वेरी वेरी वार्म हेलो टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। हाँ गई मैं प्राची, या कह लो प्रेक्सो। आप सुन रहे हैं सुनसरा रेडियो 99.9 एफएम HD4 101.9 एफएम और 1490 एएम पर। आज का टॉपिक सुनते ही शायद आपके चेहरे पर ऑटोमेटिकली एक प्यारी सी स्माइल आ जाए। आज का टॉपिक है गर्मी की छुट्टियाँ, है ना। बस दो वर्ड्स और कितनी सारी मेमोरीज एक साथ आंखों में समा जाती है। स्कूल, फ्रेंड्स, नानी का घर, आम, कुल्फी, साइकिल, और वो एक फीलिंग जिसे इंग्लिश में हम फ्रीडम कहते हैं और हिंदी में अब कोई होमवर्क नहीं। सच बताइए, स्कूल का लास्ट डे याद है? वो लास्ट बेल, ऐसा लगता था जैसे जेल की गेट खुल गई हो और टीचर क्लास में हॉलीडे होमवर्क समझा रही होती है और हमारा ध्यान नोटबुक में नहीं वैकेशन प्लान्स में होता था। इस बार नानी के घर कब जाएंगे, पापा टिकट्स बुक हो गई क्या, और सबसे ज़रूरी, मम्मी होमवर्क बाद में कर लेंगे, है ना। क्या आप लोग ने भी ऐसा किया है? और मम्मी का वही क्लासिक जवाब, पहले ही दिन से शुरू कर देना। और हम सबको पता होता था होमवर्क कब होगा, स्कूल खुलने से दो दिन पहले, और वो भी पता नहीं कंप्लीट करते थे भी या नहीं। सो एक बात नोटिस की है, उस वक्त दो महीने की छुट्टियां भी छोटी लगती थी और आज दो दिन का वीकेंड भी पता नहीं कब खत्म हो जाता है। बचपन में हम टाइम काउंट नहीं करते थे, हम मोमेंट्स कलेक्ट करते थे, है ना। रिसर्च भी यही कहती है, साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि चाइल्डहुड मेमोरीज इतनी स्ट्रॉन्ग इसलिए होती है क्योंकि उस एज में हर एक्सपीरियंस नया होता है। पहली ट्रेन जर्नी, पहला आम का सीजन, पहला क्रिकेट टूर्नामेंट कॉलोनी वाला, सब कुछ फर्स्ट टाइम, है ना। और हमारा ब्रेन उन मोमेंट्स को बहुत डीपली स्टोर कर लेता है। और अगर आप इंडिया से दूर रहते हैं, जैसे हम में से बहुत से लोग यहाँ अमेरिका में हैं, तो ये मेमोरीज और भी प्रेशियस हो जाती है। यहाँ समर वैकेशन का मतलब हो सकता है समर कैंप्स, रोड ट्रिप्स, स्विमिंग क्लासेस, और वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे बचपन की समर वैकेशन की डिक्शनरी थोड़ी अलग ही थी। उसमें लिखा होता था सुबह 7 बजे से शाम तक बाहर खेलना, घर सिर्फ पानी पीने और खाने के लिए आना। और मम्मी क्या, पूरी स्ट्रीट लाइट जल गई है, अब घर आ जाओ। मुझे तो बहुत डांटे पड़ी है, आप लोगों को क्या कहना है। और देखिए ना, आज सीन बिल्कुल एकदम रिवर्स हो गया है। पहले मम्मी हमें घर बुलाती, आज बोलती है बेटा थोड़ा बाहर भी निकला करो, धूप देख लो, खुली हवा में घूम लो। और वैसे आज के ये जैन अल्फा किड्स भी अपनी मेमोरीज बना रहे हैं, बस उनकी मेमोरीज थोड़ी डिफरेंट होगी। हमारे पास ऑटोग्राफ बुक थी, उनके पास आईपैड्स हैं। हम गली क्रिकेट की टीम बनाते थे, वो माइनक्राफ्ट में वर्ल्ड बना लेते हैं। और ऑनेस्टली दोनों जनरेशन की अपनी मैजिक है, बस कहानियाँ अलग हैं। अगर आज कोई आपसे पूछे तुम्हारा समर वैकेशन की सबसे पहली मेमोरी क्या है, तो क्या जवाब होगा? बस इसी थॉट के साथ चलिए चलते हैं एक ब्यूटीफुल गाने की तरफ। सुनिए, एंजॉय कीजिए, आई विल बी बैक।

Welcome back to Sunzara Radio, Nairobi 99.9 FM, HD4, 101.9 FM, or 1490 AM. मैं हूँ प्राची. क्या ब्यूटीफुल गाना है ना, चंदन सा बदन चंचल ये चितवन. वेल, हम बात कर रहे थे समर वैकेशंस की. समर वैकेशन का असली हीरो सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं होता था, उस तक का सफर होता था, है ना. एक क्वेश्चन, आपके घर में पैकिंग कौन करता था? हम बच्चे? बिल्कुल नहीं, है ना. हमारा काम सिर्फ एक्साइटमेंट दिखाना होता था. पैकिंग मम्मी करती थी और हम हर 5 मिनट बाद एक ही सवाल पूछते थे, मम्मी और कितनी देर, मम्मी और कितनी देर. पैकिंग भी क्या पैकिंग होती थी, एक बड़ा सा वीआईपी वाला सूटकेस. मतलब हर किसी के घर में वो होता ही होता है ना, एक वो हॉलल स्टील का टिफिन और मम्मी का वो फेमस डायलॉग, कपड़े फोल्ड करके रख लो, वहाँ जाकर बोलना मत कि कुछ नहीं है पहनने को. और पापा एक ही मिशन होता था, टिकट रिजर्वेशन और टाइम पर स्टेशन पहुँचाना. सच बताऊँ, आज भी जब भी मैं रेलवे स्टेशन की ऐसे याद करते हैं तो स्मेल आती है. एक सेकंड के लिए लगता है कि हम फिर से 10 साल के हो गए हैं और वहीं हैं. रेलवे स्टेशन मतलब स्टेशन पर पहुंचते ही एक्साइटमेंट डबल हो जाती. प्लेटफॉर्म पर वो चाय की खुशबू, समोसे वाली खुशबू, वो लोग जो घूमते हैं, जो बेचते हैं, कूली टाइप्स राइट, अनाउंसमेंट करने वाले. और हम बस वहां पे ट्रेन जब आती और कोच नंबर ढूंढ रहे कहाँ पे आएगी, दौड़ रहे इधर से उधर. और जब ट्रेन आती तो तब सबसे पहला मिशन विंडो सीट किसकी होगी. अगर हमारे साथ और भी कोई ट्रैवल कर रहा है तो कजिन साथ में हो तो समझ लीजिए, ओ भाई क्या क्या ही डिस्कशन होता था, या पता नहीं फाइट होती थी उस चीज को लेके. आई एम श्योर आप सबने भी ये चीज एक्सपीरियंस किया होगा, है ना. विंडो सीट, जो विंडो सीट होती थी, सिर्फ सीट नहीं थी वो, एक ऐसा फील उस टाइम उसके लिए झगड़ा, मतलब ऐसा फील था कि जैसे सिनेमा स्क्रीन थी और हम लोग बस एक हमारे लिए जैसे फील्स आ रहे रस्ते में, नदियाँ, पेड़, छोटे स्टेशन, सब सब देखते देखते पता ही नहीं चलता कि था कि जब कब 4 घंटे या 10 घंटे या 12 घंटे निकल गए. रिसर्च कहती थी एक स्लो ट्रैवल स्पेशली जो ट्रेन जर्नीज हैं, फैमिलीज को नेचुरली ज़्यादा बात करने का टाइम देती है. नो रश, नो नोटिफिकेशन, बस लोग और उनकी कन्वर्सेशन. शायद इसलिए ट्रेन जर्नीज याद रहती है, सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं. और ट्रेन में एक कैरेक्टर जरूर होता था, वो अंकल जो पूछते बेटा कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो, और अगले 20 मिनट में पूरा इंटरव्यू लेते थे. ऐसे ऐसे लोग मिलते थे आपको ट्रेन में. खैर, इससे मुझे एक और बात याद आई कि हमें यहाँ पे भी, हम यूएस रहते हैं पर यहाँ पे आजू बाजू में हम ट्रेन स्टेशन बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, यहाँ पे ट्रेन सर्विसेज बहुत अच्छी होती है. हमें यूज़ करना चाहिए, बहुत सीरियसली बहुत मज़ा आता है ट्रेन जर्नी में. अपने बच्चों को अक्सर ये एक्सपीरियंस देते रहना चाहिए, ना कि ओनली सिर्फ वन टाइम एक्सपीरियंस, लाइक बहुत ऑफन ये करते रहो, अच्छा लगेगा. और जो बोल रहे ना कि फैमिली टाइम बहुत अच्छा हो जाता है वहाँ पे. और फिर जब फाइनली जो स्टेशन आ जाता है प्लेटफॉर्म पर, नानी दूर से ही हाथ हिला रही होती है, नाना या मामा कोई तो लेने आया होता है. और जैसे ही घर पहुँचते पहला क्वेश्चन, कहाँ खाओगे और कहाँ जाओगे, क्या खाना है. और पहले क्या होता था, मोस्टली मुझे तो आम होता था, मेरी नानी के यहाँ एक स्पेशल छोटे छोटे आम आते थे, उसको हम चूसने वाले आम बोलते थे, वो हमारा सबका फेवरेट होता था. मेरी नानी ये सब पूरा कलेक्ट करके रखती थी, बकेट बकेट भर के, वॉश करके, एवरी सिंगल डे के लिए. आज हम में से बहुत से लोग अमेरिका या दुनिया के अलग अलग शहरों में रहते हैं, और शायद हमारे बच्चों के लिए ये नानी का घर का मतलब एक लॉन्ग फ्लाइट या फेस टाइम कॉल, और ब्लीव मी वो भी अपनी मेमोरीज बना रहे हैं. बस उनकी ट्रेन की जगह एयरप्लेन है, मीडियम बदल गया, लेकिन नानी का हग आज भी वही है. एक फनी कंपेरिजन सुनो, हमारे टाइम पापा विंडो सीट के लिए, आज के किड्स
डैड कैन आई हैव द आईपैड. सच कहूँ दोनों ही ब्यूटीफुल हैं, बस मेमोरीज कलेक्ट करने का थोड़ा तरीका बदल गया है ना. बॉलीवुड ने ट्रेन जर्नीज को कितना ब्यूटीफुली सेलिब्रेट किया है. DDLC याद है? ट्रेन सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं है, वहीं से तो कहानियाँ शुरू होती है. स्वदेश में मोहन की ट्रेन जर्नी अपनी रूट्स तक वापस आने की जर्नी थी. अगर आपके बच्चे या ग्रैंड के साथ बैठे हैं, उन्हें पूछिए, डू यू नो व्हाट ट्रैवलिंग बाय ट्रेन इन इंडिया फील लाइक. स्टोरीज सिर्फ बुक्स में नहीं होती, फैमिलीज में भी होती है ना. लिसन टू दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग, विल बी बैक.

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक इन चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।
2: 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी, पक्का लोकल।

वेलकम बैक टू सुन जरा रेडियो 99.9 FM और मैं हूँ प्राची। सो हम बात कर रहे थे समर वेकेशन के बारे में। अब जब हमने बैग रख चुके हैं, नानी के घर हम एंट्री कर चुके हैं, सूटकेस खुल गया है और मम्मी बोल रही है थोड़ा रेस्ट कर लो। रेस्ट समर वेकेशन में? ओह इम्पॉसिबल है ना, हमारे डिक्शनरी में ये वर्ड ही नहीं था। घर के अंदर कितनी देर रुकते हैं? मैक्सिमम 15 मिनट। सबको प्रणाम किया, हग किया और बात खत्म। उसके बाद मतलब जैसे गांव में और सब जगह खबरें फैल जाती है, ऑलरेडी फैली हुई थी कि आने वाले हैं ना, तो मेरे तो दोस्त ही तुरंत तुरंत 15 मिनट के अंदर तो मुझे बुलाने आ जाते थे, आंटी प्राची को ज़रा बोलिए, बुला दीजिए हम आ गए हैं। मतलब यार नीचे से आवाज़ शुरू हो जाती है, ओए बाहर आ, कहाँ गई, चल आ जा फटाफट। तो ना परमिशन लेटर लेना होता है, ना कोई फॉर्मेलिटी, ना कुछ भी, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं। आजकल हम सोफिस्टिकेटेड लाइफ के बीच में हम फंस के रह गए। बस एक आवाज़ आई और पूरी टीम बाहर। हमारे टाइम पे मतलब गूगल मैप्स नहीं थे राइट, लेकिन कॉलोनी का हर कोना याद है, कौन सा घर के बाहर बॉल नहीं मारनी, कौन से अंकल हमेशा डांटते हैं, सब याद होता है। एक पूरी पूरी पूरी पूरी ज्योग्राफी हमें अपने मोहल्ले की पता होती है। और गेम्स यू नेम इट हम लोग खेलते थे, है ना, क्रिकेट भले आता ना हो, वो सतोलिया, खो खो, पकड़ा पकड़ी, हाइड एंड सीक, लगोरी राइट, स्कीपिंग और गिल्ली डंडा खेला है क्या? बड़ा यूनिक गेम है। और अगर कुछ भी ना मिले तो बस एक प्लास्टिक की बॉटल और फुटबॉल मारना बना के खेलना शुरू। पूरा इमेजिनेशन फुल पावर पे होती थी। हर गेम के बीच में एक डायलॉग बिल्कुल ज़रूरी एकदम हमेशा रहता था, आउट नहीं हूँ है ना, नो बॉल थी या लास्ट चांस पक्का प्लीज़ है ना। और वो लास्ट चांस कसम से कम से कम 7 बार होता था, याद है वो? हम पानी का ब्रेक लेते थे जब भी, एनर्जी ड्रिंक्स ना, प्रोटीन शेक वगैरह कहाँ, ये सब आजकल तो देखो मैं पेरेंट्स और सब लोग लेके बैठ जाते हैं, चलो चलो ब्रेक, ये ले लो वो ले लो, हमारे टाइम पे कहाँ ये सब, बस एक मिल जाए अगर ब्रेक के टाइम में मम्मा के पास और फटाफट नींबू पानी, दैट्स इट। और मम्मी बोलती थी धूप में मत भागो इतना, और तुम हम दोनों मिनट में बाद में फिर ग्राउंड में, कुछ सुनते नहीं। आज फ्रेंडशिप मेंटेन करने के लिए स्नैप स्ट्रिक्स हैं, ग्रुप चैट्स हैं, हमारे पास बस एक डोर बेल थी, है कि नहीं, सोचो और एक आवाज़ बाहर आ जा। हमने फ्रेंडशिप को टाइपिंग से पहले जिया है, लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि आज के बच्चे गलत हैं, आज के किड्स माइनक्राफ्ट में सीरीज बना लेते हैं, कोडिंग सीखते हैं, ये भी क्रिएटिविटी ही है, बस मीडियम बदल गया है। दोनों ही अपने टाइम के बच्चे हैं। रिसर्चर्स कहते हैं कि फ्री आउटडोर प्ले टीचर्स चिल्ड्रन नेगोशिएशन, टीम वर्क, लीडरशिप और सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। क्रिकेट खेलते खेलते ही तो सीखा था हमने कि हर बार बैटिंग नहीं मिलती, कभी फील्डिंग भी करनी पड़ती है, और फील्डिंग नहीं करोगे तो बैटिंग भी नहीं होगी। और लाइफ भी तो वैसे ही है, अगर चाइल्डहुड और दोस्ती की बात हो तो चिल्लर पार्टी याद आती है और अमेजिंग मूवी। हाँ वैसे बाय द वे आप अगर अपने बच्चों को रिकमेंड करना चाहें ना तो चिल्लर पार्टी इज़ वेरी गुड मूवी। और तारे ज़मीन पर उस फिल्म ने हमें याद दिलाया कि हर बच्चा अलग होता है ना। समर वेकेशन शायद इसीलिए स्पेशल थे क्योंकि उन 2 महीनों में हमें वो बनने का मौका मिलता था जो हम सच में बनना चाहते थे। मेरा आज का सवाल है आपसे, अगर आपको एक पूरा दिन मिले, ना ऑफिस, ना फोन, ना मीटिंग्स, तो आप अपने बच्चे बचपन का कौन सा गेम अब वापस दोबारा खेलना पसंद करेंगे, सोचिए। और आप मुझे कॉल कर सकते हैं 919-999-8595 पे। तब तक आप ये गाना सुनिए और आई विल बी बैक सून।

सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: வெல்கம் பேக் டு சின்சரா ரீடனர் அப்பர் 99.9 FM அஷிஃபோ 101.9 FM அப்பர் 90 AM மே ஹூ பிராச்சி. சம்மர் வெக்கேஷன் மத்லப் ஆம், ஆர் ஆம் கா சீசன் மத்லப் ஃபெஸ்டிவல். கர் மே சப்சே பெஹலா ஆம் ஆதா தோ உஸ்கி என்ட்ரி கிசி செலிப்ரிட்டி சே கம் நீ ஹோதி தி, ஹை நா. मम्मी पहले न्यूज़पेपर बिछाती थी, उस पर आम रख दिए जाते थे और हम रोज़ पूछते अब पक गया, अब पक गया। जिस दिन मम्मी बोलती थी आज आम काटेंगे, उस दिन का एक्साइटमेंट ही अलग लेवल पे था। हम इंडियंस के लिए मैंगो सिर्फ फ्रूट नहीं होता, इमोशन है, इमोशन। कोई आम रस का फ़ैन, कोई मैंगो शेक का, कोई आम पन्ना, और कुछ लोग तो सीधा बोलते थे मुझे तो बस गुठली चाहिए। फ्रीज खोलते ही क्या दिखता था बताइए, बताइए, बताइए। रसना, कभी पिया रसना? ओ, और वो उसकी एड, आई लव यू रसना। रूहअफ़ज़ा नींबू पानी, घर का बना हुआ आम पन्ना। आज के बच्चे पूछते हैं कौन सा फ्लेवर, हम पूछते थे आइस डाली है या नहीं डाली, बस इतना ही हमारा केयर था। और वो आवाज जो हर कॉलोनी में घूमती थी, कुल्फी ले लो कुल्फी, मटके वाली कुल्फी, रिमेम्बर, लाल लाल कपड़े से ढका हुआ मटके में और वो एल्यूमिनियम के मोल्स में कुल्फी रहती। हम घर के अंदर से ही भाग के भागते हुए निकलते थे, मम्मी 2 रुपए बस। और मम्मी का क्लासिक आंसर, कल ही तो दिए थे, कल ही तो खाई थी, लेकिन 2 रुपए मिल जाते ही खुशी का ठिकाना नहीं होता था। साइंटिस्ट कहते हैं कि स्मेल और टेस्ट डायरेक्टली हमारे ब्रेन के उस पार्ट से कनेक्टेड होते हैं जो मेमोरीज और इमोशंस स्टोर करता है, है ना। इसे न्यूरोसाइंस में एक वर्ड है, टर्म है, प्राउस्ट इफेक्ट कहा जाता है। कुछ स्मेल टाइम मशीन की तरह काम करती है। यहाँ US में भी समर आता है, फार्मर्स मार्केट, राइट, फ्रेश पीचीज, लेकिन जब इंडियन ग्रोसरी स्टोर में हम पहला अल्फांसो मैंगो, हमारा अपना, दिखता है तो दिल ऑटोमेटिकली इंडिया पहुंच जाता है। प्राइस देखकर रियलिटी भी याद आ जाती है, पर कुछ कुछ चीजें बजट नहीं देखती, दिल से खरीदी जाती है ना। बॉलीवुड ने भी खाने को सिर्फ फूड नहीं, इमोशन दिखाया है। आपको मूवी पता ही होगी द लंच बॉक्स, एक डब्बे में सिर्फ खाना नहीं होता था, यादें होती थी, अपनापन होता था। वैसे ही आज अपने बच्चों या ग्रैंड किड्स को सिर्फ मैंगो सर्व मत कीजिएगा, उन्हें एक स्टोरी भी सर्व कीजिए। बताइए कि आपके बचपन में आम का सीजन कैसा होता था, है ना। सो अमेजिंग, जब तक आप शेयर कर रहे हैं, और अगर बच्चे नहीं है तो आप मुझे भी शेयर कर सकते हैं आपके कोई भी स्टोरीज, तो यू कैन कॉल मी ऑन 919-999-8595 पर। एंड मीनवाइल एंजॉय दिस beautiful song after the break.
1: Aap sun rahe hain Nara 101.9 FM 99.9 FM SD 44090 AM Pakka Desi Pakka Local.
2: Download kariye original high quality songs saregama.com se.

Naira 101.9 FM Rale Dharam. Also available on 99.9 FM, HD4 and 1490 AM. Pakka Desi. 99.9 Naira me kho jao Pakka Desi. Welcome back to Sunzara Radio, Naira Pay 99.9 FM, HD4 101.9 FM of 1490 AM. मैं हूं प्राची। अब पेट भी खुश हो गया, दिल भी। लेकिन समर वेकेशन सिर्फ खाने के लिए फेमस नहीं थे, है ना? एक और चीज के लिए जिसके लिए हम पूरा दिन प्लान बनाते थे, बताओ क्या? सोचो। हाँ, टीवी टाइम। एब्सोल्यूट, क्योंकि हमारे मतलब उस टाइम पे कार्टून्स जो भी आते थे हमारे हिसाब से नहीं आते थे, हमें उनके हिसाब से चलना पड़ता था, है कि नहीं? तो वैसे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो हमें ज्वाइन किए उन्हें बता दो कि हम गर्मी की छुट्टियां और वो यादें जो कभी पुरानी नहीं होती। आज के बच्चे शायद इस बात पर बिलीव ही नहीं करते कि टीवी देखना भी प्लानिंग से होता था, बस एक फिक्स टाइमिंग, और अगर वो मिस हो गया तो फिर टाटा बाय बाय, नेक्स्ट वीक मिलते हैं, है ना? शाम को 5 बजे से ही प्लानिंग हमारी शुरू हो जाती थी, जल्दी नहा लो और खाना खा लो, क्योंकि सुबह से ही नेक्स्ट डे हमें क्या क्या प्लान करना था, शक्तिमान आता, संडे से वीकेंड नहीं होता, फैमिली डे होती है। मेरा सबसे फेवरेट संडे को, मुझे अगर मोटिवेशन चाहिए जल्दी उठने का तो वो रंगोली हुआ करती थी। मतलब जो गाने देखने का मौका आपको रंगोली में सुबह सुबह आता था, वैसा तो कभी कभी फील नहीं किया। सुबह रंगोली, फिर कार्टून्स, शक्तिमान भी, जंगल बुक्स, राइट, शाम की मूवी, और बीच बीच में मम्मी की आवाज़, टीवी से थोड़ा दूर हटो, टीवी से दूर से देखो। आज भी वो डायलॉग्स हर इंडियन घर में अमर है। मतलब आज की जनरेशन वाले माँ बाप भी, जो कभी बच्चे हुआ करते थे, वही डायलॉग्स रिपीट मारते हैं बच्चों को, और विच इज़ वेरी नाइस एंड सेफ। तो आज के बच्चों के सुपर हीरोज हैं मार्वल, डीसी, एनिमी हेन, एंड दे आर अमेजिंग। लेकिन हमारे सुपर हीरोज भी किसी से कम थे क्या? शक्तिमान, जूनियर जी, हातिम, ओ यस, एंड सोनपरी, और सबसे इंटेलिजेंट हमारे चाचा चौधरी, वो याद है जिनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता। और टीवी के बाद एक और एडिक्शन था, कॉमिक्स, OMG, चंपक, वो नादान, टिंकल, लोटपोट, अमर चित्र कथा, एक कॉमिक पूरी कॉलोनी में घूमती थी। तूने पढ़ लिया, चलो मेरा टर्न, नेक्स्ट, मतलब रोटेशन पे होती थी, पहले रवि पढ़ेगा, फिर नेहा, फिर पिंकी, और लास्ट में वो कॉमिक इतनी फोल्ड हो जाती थी कि ओ माय गॉड, लगता था बस उसने भी एंजॉय कर लिया हमारे साथ वेकेशन। रिसर्चर्स कहते हैं कि जब हम स्टोरीज पढ़ते हैं, हमारे ब्रेन का इमेजिनेशन सेंटर बहुत एक्टिव हो जाता है। हम सिर्फ चाचा चौधरी नहीं पढ़ते थे, हम खुद भी डिटेक्टिव बन जाते थे। बुक्स इमेजिनेशन को एक्सरसाइज कराती थी, और इमेजिनेशन हर इन्वेंशन की पहली सीढ़ी होती है। जी हाँ, आज के बच्चों के पास किंडल है, ऑडियो बुक्स हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी एक फिजिकल बुक हाथ में देने का भी अपना ही मजा है। टेक्नोलॉजी और बुक्स दोनों दोस्त हो सकते हैं, कॉम्पिटिशन की जरूरत नहीं है, बट बुक्स को छोड़ना नहीं चाहिए। मेरी एक फ्रेंड थी जिसके घर समर वेकेशन में रूल हुआ करता था, रोज 1 घंटा टीवी, 1 घंटा रीडिंग, फिर बाहर गेम्स। उस वक्त लगता था कितना स्ट्रिक्ट रूल है, आज लगता है कितना बैलेंस्ड बचपन था। सो बैलेंस इज ऑल्सो नेसेसरी, है ना? तारे जमीन का एक डायलॉग था, मुझे बहुत पसंद है, हर बच्चा अलग होता है ना? समर वेकेशन शायद साल का वो टाइम था जब हम रिपोर्ट कार्ड से ज्यादा अपनी क्यूरियोसिटी को फॉलो करते थे। अगर आपको सिर्फ एक कार्टून दोबारा देखने का चांस मिले तो
तो कौन सा चूज करेंगे? और अगर आपके घर में बच्चे हैं उन्हें भी पूछिए, देखिए उनका आंसर और आपका आंसर कितना अलग होता है। जस्ट टेस्ट, फन थिंग राइट। मैं आती हूँ वापस से, तब तक ये ब्यूटीफुल सा सॉन्ग एंजॉय कीजिए।

क्या बात। वेलकम बैक टू सिंसियर रेडियो 99.99 एफएम एचडी 411.9 एफएम और 1490 एएम। मैं हूं प्राची। लेकिन समर वेकेशन का सबसे ब्यूटीफुल चैप्टर भी बाकी है, क्योंकि जब कजिन्स के साथ मिलते थे तब घर होटल नहीं एडवेंचर पार्क बन जाता था, है ना? याद है वो एक्साइटमेंट? इस बार कौन कौन आ रहा है? मुंबई वाले कजिन्स आ रहे हैं, इंदौर वाले। आज हम ग्रुप चैट में लिखते हैं सारी बातें। उस वक्त लैंडलाइन पर एक फोन आता और पूरा घर का मूड चेंज हो जाता, है ना? एक घर में 8, 10, कभी 12 बच्चे। आज सोचो तो लगता है हाउ डिड आवर पेरेंट्स मैनेज। एक ही बाथरूम, एक ही टीवी और फिर भी नो कंप्लेंट्स। ना मेरा रूम, ना कुछ भी पर्सनल स्टफ। ऑफिशियली स्लीपिंग टाइम 10 बजे होता है, राइट? पर अनऑफिशियली टॉकिंग टाइम 2 बजे तो मिनिमम। भूत की स्टोरी, स्कूल सीक्रेट, क्रश डिस्कशन, पिलो फाइट और जैसे ही मम्मी के आने की आवाज आहट सुनाई दे, सब एक सेकंड में सीधे सो जाते। ऑस्कर विनिंग एक्टिंग, है ना? एक चिप्स का पैकेट 10 लोग और फिर भी सबको मिलता था। उस वक्त हमने किसी ने शेयरिंग इज केयरिंग चैप्टर नहीं बढ़ाया, हमने वो जिया है, ऑटोमेटिकली सीखा है। चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चिल्ड्रन वो स्पेंड टाइम विद कजिन्स जो हैं ऑफन डेवलप स्ट्रॉन्गर सोशल स्किल्स। हर कजिन आपका अलग पर्सनालिटी का होता है और अनोइंगली हम हमारी अडेप्टेबिलिटी जो है कॉम्प्रोमाइज टीम वर्क सीख जाते हैं विदाउट एनी वर्कशॉप्स। और एक कजिन हर फैमिली में होता है जो हर गेम में चीटिंग करता है ना, और पकड़े जाने पर बोलता है अरे रूल्स तो मैंने बनाए ही नहीं थे। याद है हम उससे भी डील कर लेते थे। नानी या दादी, उनके पास कोई डिग्रीज नहीं थी लेकिन लाइफ की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। हर रात एक नई कहानी, राजा रानी की, अकबर बिरबल की, सारे पंचतंत्र, मतलब पूरा आप उनको कितनी कहानियां दी थी। तब लगता था बस स्टोरी है, अब समझ आता है वो लाइफ स्किल्स थी। कितनी टैलेंटेड थी ना हमारी नानी दादियां। यहाँ अमेरिका में रहते हुए कभी कभी एक चीज सबसे ज्यादा मिस होती है, स्पॉन्टेनियस फैमिली टाइम। आई स्वेयर इंडिया में कोई भी बिना बताए आ जाता है, यहाँ विजिट प्लान करने के लिए पहले कैलेंडर देखना पड़ता है। लेकिन शायद इसीलिए सब जब हम इंडिया जाते हैं तो हर फैमिली गैदरिंग और भी स्पेशल लगती है। आज कजिन्स अलग अलग कंट्रीज में रहते हैं लेकिन टेक्नोलॉजी ने एक अच्छी चीज़ भी दी है, वीडियो कॉल्स, फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप जो भी। बस कभी कभी स्क्रीन से बाहर निकलकर एक रियल हग भी ज़रूरी होता है ना? आई रियली मिस दैट। अगर फैमिली की बात हो तो हम साथ साथ हैं। याद आती है हमारे बचपन में फैमिली टाइम स्केड्यूल पर नहीं होता था, है ना? नेचुरली हो जाता था। मेरी एक दोस्त ने मुझे कहा था मैं अपने बच्चों को हर समर इंडिया इसलिए ले जाती हूँ ताकि उन्हें सिर्फ इंडिया ना दिखे, उन्हें अपने लोग मिले, क्योंकि मेमोरीज प्लेसेस से नहीं लोगों से बनती है। क्या सही कहा उसने, मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी, दिल को छू गई। अगर आप अपने किसी कजिन्स को याद कर रहे हैं तो शो खत्म होने का वेट मत कीजिए, एक छोटा सा मैसेज भेज दीजिए। क्या मैसेज करेंगे? याद है वो वाला समर वेकेशन? और फिर देखो आप मुझे याद करेंगे। वेल, सुनिए ये ब्यूटीफुल सा गाना और आई बी बैक सून टॉकिंग अगेन मोर अबाउट समर वेकेशन।

0: Hello, welcome back to Radio Naira, 99.9 FM, HD4 101.9 FM, 1490 AM. Actually, दो लोग कॉल पर हैं, सो लेट्स लिसन. हेलो हेलो
1: हेलो, हाय प्राची, कैसे हैं आप?
0: मैं अच्छी हूँ, आप दोनों कैसे हो?
1: हम भी मस्त हैं. आपको पता है कि मेरे यहाँ ना सुबह के 6 बजे, आई मीन 6:30 टू बी प्रिसाइज, मेरी एक दोस्त है जो न्यूयॉर्क में रहती है, इतनी कमीनी है ना कि उसने मुझे सुबह सुबह उठा दिया, ठीक है, ये सुनने के लिए कि आपका शो चल रहा है. तो मैं शो सुन रहा हूँ और जो अगली आवाज है ना जो आपको अभी आई थी, हाय, वो वही दोस्त की है जिसने मुझे उठाया. तो मुझे ना मुझे मैं पापा की याद आ गई जब वो मुझे स्कूल के लिए उठाया करते थे और मैं उनको बोलता था दो मिनट. तो मैंने सोचा कि यार अब नींद तो उठ गई है तो कॉल ही कर लूं.
0: ओह नाइस, है ना, कितना अच्छा सोचा आपने.
2: और वो कमीनी दोस्त मैं हूँ. हाय प्राची, हाउ आर यू?
0: लेट मी गेस, रमीसा. Hi, how are you, Rami?
2: I'm good.
0: बताइए. अब बहुत अच्छा किया आपने, आप सब अपने सारे फ्रेंड्स को इस तरह से उठाती हैं.
1: हाँ.
0: ओह नहीं.
2: आपका टॉपिक से मुझे सारे कजिन्स के मुझे सारे मसाले सारे मेमोरीज वापस आ जाती है.
0: सही है ना? वाह, क्या बताओ, आज आपको क्या मेमोरी याद आई? क्या कुछ समर वेकेशन के बारे में कुछ?
1: मैंने तो मेरी मेमोरी बता दी ना प्राची आपको. अब मैं ना चाह रहा हूँ कि मेरी ये दोस्त है ना जो कमीनी, उसको मैं जोर से गाना सुनाऊं.
0: कौन सा?
1: पता है गाना क्या? सुन रहा है ना तू?
0: जाग रहा हूँ मैं या रो रहा हूँ मैं?
1: हाँ, जाग रहा हूँ मैं और रो भी रहा हूँ मैं.
0: ओके, नाइस, श्योर, वाओ. हाँ यार, समर वेकेशन के टाइम पे एक पॉइंट ये भी था कि सुबह सुबह जब ट्रेन ट्रैवलिंग करते थे ना, तो हम लोग भी सुबह, मेरे पापा मुझे भी सुबह सुबह 4 बजे उठाते थे, अरे चलो चलो चलो, ट्रेन मिस ना हो जाए, निकलना है, बस पकड़ना है फिर आगे. तो यस, डेफिनेटली मुझे भी ये तुम्हारी बात से ही बात याद आ गई. और रमी, या रमी, आपको क्या शेयर करना है बताओ?
1: नहीं, इसको तो स्कूल को गोद में लेके जाते थे ना. नहीं थी.
0: ओके. नहीं, उसको कुछ तो उसके पास ही कुछ तो होगा.
2: सही कह रहा है, ब्रश भी करवाता था रास्ते में जाके, जाते टाइम ब्रश और पेस्ट देके फिर मेरा दांत क्लीन करके लेके जाता था. मैं कूली करती थी और फेंकती भी थी, तो वो भी सफाई करते ना, साफ कर देता था. ये कितने अच्छे दोस्त है, चाइल्डहुड फ्रेंड.
0: नहीं नहीं नहीं, आई ओह वाओ, सो नाइस टू नो दैट, वेरी नाइस.
1: और ये बदले आज मुझ पर निकाल रही है.
0: कितनी अच्छी बात है ना किसी को सुनना.

0: हैप्पी टू नो दैट मेरा शो सिडनी में भी सुना जा रहा है. लकी मी ना.
1: और भी बहुत सारी जगह पे आपका सुना जाता है. मेरे मेरे मेरे काफी दोस्त लोग आपको सुनते हैं. मेरे एक फ्रेंड है विकी जी, वो विकी भी सुनता है पाकिस्तान से, सुल्तान सुनता है कश्मीर से, नेहा तो सुनती है न्यूयॉर्क से. काफी सारे दोस्त हैं.
0: अच्छा, दैट्स सो नाइस
1: और
0: ऑफ यू.
1: ये भी
0: थैंक
1: है कमीना, आई मीन शाज, इसका नाम शाज है.
0: हाय. ओके हाय. हाँ, तो और
1: तो
0: कुछ
1: प्लीज
0: पर
1: प्राची जी मेरी रिक्वेस्ट पूरी कर दें.
0: सुन रहा है ना, तू जाग रहा हूं मैं. डेफिनेटली आई एम प्लेइंग दैट सॉन्ग नेक्स्ट.
1: थैंक यू सो मच.
0: थैंक यू. थैंक्स फॉर कॉलिंग गाइस.
1: थैंक यू प्राची. यू नाइस टॉकिंग टू यू.
0: वाओ, क्या बात है. तो आपके पास भी कुछ क्यूट मेमोरीज आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके कजिन्स के साथ अगर है तो प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिए. 9199998595 भी. और हाँ, मैं आपको आपसे बात कर रही थी समर वेकेशंस के बारे में, कि हम सिर्फ मस्ती नहीं थे, उन्होंने मतलब हमें बहुत कुछ सिखाया है ना, बिना क्लासरूम के समर वेकेशंस ने, बिना एग्जाम्स के. स्कूल हमें मैथ साइंस और इंग्लिश सिखाते हैं, लेकिन समर वेकेशन में हम लाइफ सीखते हैं. किसी ने कभी हमें बैठ कर नहीं सिखाया शेयरिंग क्या होती है, लेकिन जब भी एक ऑरेंज कैंडी हो, चार लोगों में टुकड़े बांट कर खाना हमने खुद ही सीख लिया. तो चलिए, जैसे कि हमने बात किया इन लोगों से, हम प्ले करते हैं इनके सॉन्ग्स. मीनवाइल मैं आती हूँ वापस से बात करने के लिए आपके लिए.
2: Nara 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM. Pakka Desi, Pakka Local.

0: हेल्दी लिविंग मींस इंडियन ट्रेडिशन. सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा ओनली ऑन रेडियो नायरा.
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।

Welcome back to Sun Sera Radio, Nairobi 99.9 FM, HD4, 101.9 FM और 4090 AM. मैं हूँ प्राची. तो हम बात कर रहे थे फनी कंपैरिजंस की, अब सिर्फ दिल से बात करते हैं. और पहले ही बता दूँ, ये सेगमेंट आज के बच्चे स्पॉइल्ड हैं ऐसा वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं है. ये सेगमेंट एक ऑनेस्ट प्यार भरे अंदाज में क्या बदला है दोनों तरफ से. तो देखिए, आज के बच्चे क्या पा रहे हैं, एआई कोडिंग टेक्नोलॉजी जो उनकी उंगलियों पे है, ग्लोबल एक्सपोजर्स, राइट, वो दुनिया के किसी भी बच्चे से कनेक्ट कर सकते हैं क्लिक में. और कॉन्फिडेंस जो हम में शायद थोड़ा कम था, आज के बच्चे स्टेज पे खड़े होकर भी अपनी बात रखते हैं जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं है. ये सब जेन्युइनली ब्यूटीफुल है, लेकिन कभी कभी लगता है शायद वो कुछ ऐसा मिस कर रहे हैं जो हम फ्री में पाते थे. बोर्डम, हाँ बोर्डम, वो खाली दोपहर जब कुछ करने को नहीं होता था और वहीं से इमेजिनेशन जन्म लेती थी. स्लो आफ्टरनून्स जब टाइम इतना स्लो था कि लगता था दिन खत्म नहीं होगा. नेबरहुड फ्रेंडशिप्स जहाँ तो सिर्फ एक डोर पैल दूर थे, है ना कि एक आपके अंदर, एक ऐप के अंदर, राइट. और गेम्स बनाने की जो कला, जब कुछ भी ना हो तो एक प्लास्टिक बॉटल, एक स्टिक और तीन दोस्त मिलकर अपना खुद का गेम हम लोग इन्वेंट कर लेते थे. रिसर्च इस बात को सपोर्ट भी करता है, जब बच्चों के पास पूरा स्ट्रक्चर्ड एंटरटेनमेंट कम होता है ना, तब उसका ब्रेन नए कनेक्शंस बनाता है. बोर्डम एक्चुअली क्रिएटिविटी की नर्सरी है. यहाँ US में रहते हुए मैं ये बात और भी ज़्यादा महसूस करती हूँ, जहाँ बच्चों की समर स्केड्यूल कभी कभी इतनी स्ट्रक्चर्ड होती है, मतलब कैंप, क्लास, एक्टिविटी, खाली टाइम मुश्किल से मिलता है. और इंडिया में सेम हो गया, अब शहरों में भी यही ट्रेंड है ना. लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ ऐसा नहीं है जो हमेशा के लिए खो गया है. हम अभी भी अपने बच्चों को वो खाली टाइम दे सकते हैं, बस थोड़ा कॉन्शियस एफर्ट चाहिए, राइट. तो एक ब्यूटीफुल सा गाना सुनिए और फिर मैं तुरंत फटाफट वापस आती हूँ.

Welcome back to Sansara Radio Night Appe. So, end time aa gaya hai. Isliye zara main fatafat conclude karti hu cheezon ko. Hum apne bachcho ko wahi bachpan nahi de sakte jo humne jiya tha. Wo gali, wo colony, wo landline, wo champak ki khushboo, wo waqt wapas nahi aa sakta. Aur ye maan lena bhi zaruri hai. Lekin hum unhe kuch aur de sakte hain, shayad usse bhi zyada precious. हम उन्हें दे सकते हैं अपनी स्टोरीज, जब हम उन्हें बताते हैं कि हम कैसे थे उनकी एज में. हम उन्हें सिर्फ एंटरटेन नहीं करते, हम उन्हें अपनी रूट्स देते हैं, है ना. हम उन्हें दे सकते हैं अपनी ट्रेडिशंस, छोटे छोटे रिचुअल्स, दिवाली की सफाई, राखी का त्यौहार, घर के पूजा का तरीका. ये चीज़ें उन्हें वही फीलिंग्स देती हैं जो हमें देती थी. हम उनके साथ खेल सकते हैं बोर्ड गेम्स, है मतलब पुराने वाले लूडो कैरम, फोन साइड में रखें. हम उन्हें ले जा सकते हैं टेरेस पे, यहाँ तो वैसे नहीं पर इंडिया में जाके बाहर निकल के सिर्फ कन्वर्सेशन के लिए बिना किसी रीजंस के. हम प्लान कर सकते हैं रोड ट्रिप्स जहाँ डेस्टिनेशन से ज़्यादा गाड़ी में जाना इम्पॉर्टेंट है. हम रख सकते हैं फ़ोन फ्री इवनिंग्स, चाहे हफ्ते में एक दिन ही सही. हम उनके साथ बना सकते हैं आम पन्ना अपने अपने हाथ से और उन्हें बताते हुए कि नानी ये कैसे बनाती थी. और हम उन्हें सिखाना, हम उन्हें ये भी सिखा सकते हैं जो हम गेम्स खेलते जैसे सतोलिया, ये काइट उड़ाना, छोटी छोटी चीज़ें जो उन्हें उनके लिए नए एडवेंचर्स हैं और हमारे लिए एक दोबारा जिया हुआ बचपन. क्योंकि बचपन सिर्फ जगह नहीं होता, बचपन एक फीलिंग होता है, राइट. प्यार की, फ्रीडम की, टुगेदरनेस की. और वो फीलिंग हम आज भी अपने बच्चों को दे सकते हैं, बस फॉर्मेट अलग होता है. इस हफ्ते एक छोटी सी चीज़ चुनिए अपनी रस से, एक बोर्ड गेम या एक रेसिपी, एक कहानी, और अपने बच्चों के साथ शेयर कीजिए, देखिए कैसा लगता है. तो आज हमने साथ में पूरा एक सफ़र किया, स्कूल की लास्ट बेल से लेकर ट्रेन की विंडो सीट तक, कॉलोनी के ग्राउंड से लेकर आम के सीजन तक, कजिन्स की रातों से लेकर नानी की कहानियों तक. और अब इस शो को ख़त्म करते हुए मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, हम सब बड़े ज़रूर हो गए हैं, बिल्स आ गए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई, मीटिंग्स आ गई, डेडलाइंस आ गई हैं, लेकिन सच कहूँ अंदर कहीं एक छोटा सा बच्चा आज भी पहली बारिश में भीगना चाहता है, कुछ पी खाना चाहता है, साइकिल चलाना चाहता है और बिना किसी रीजन के जोर से हंसना चाहता है. ग्रोइंग ओल्डर इज कंपल्सरी, ग्रोइंग अप कंप्लीटली ऑप्शनल. अपने अंदर के बच्चे को कभी रिटायर मत होने दीजिए. मैं हूं प्राची और आप सुन रहे थे सनसरा रेडियो 99.9 FM HD 4.1.9 FM 4090 AM. मैं मिलूंगी आपसे एक नए टॉपिक, नए एहसास और नए सफर के साथ. तब तक के लिए ये याद रखिएगा, बचपन कहीं नहीं गया, वो हमेशा हमारे अंदर रहता है. और याद रखिए, अब बोलो जरा, मैं हमेशा सुन रही हूँ. सो टुडे वी रिलीव्ड आवर चाइल्डहुड समर्स फ्रॉम ट्रेन टू completely like growing up is optional thing. So never let the child inside you retire. Your final song enjoy kijiye aur main milti hu aapko next Tuesday with same vibe.

रेडियो सिटी पर सुनिए द हम्मा सॉन्ग, संग बाय जुबिन नौटियाल, शाशा तिरुपति, कंपोज्ड बाय एआर रहमान, रिक्रिएटेड बाय बादशाह एंड तनिष्क, एंड रिटन बाय महबूब।

0: नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।
1: नॉट एवरी रेस्टोरेंट बिकम्स एन एक्सपीरियंस, बट सोल फ्लेवरस्केप ऑफ इंडिया इज अ जर्नी थ्रू टेस्ट, ट्रेडिशन एंड अनफॉरगेटेबल फ्लेवर्स।
2: फ्रॉम क्रिस्पी दिल्ली स्टाइल आलू टिक्की चाट, फ्लेवरफुल समोसा चाट, टू द सिग्नेचर सोल दाल बुखारा,
1: एंजॉय फ्रेश सिजलिंग वेज एंड नॉन वेज स्टार्टर्स पेयर्ड परफेक्टली विद ओवन फ्रेश चूर चूर नान मेड विद लव एंड फ्रेश इंग्रेडिएंट्स।
2: प्लानिंग योर बर्थडे, वेडिंग, ग्रेजुएशन पार्टी, कॉर्पोरेट गैदरिंग और फैमिली सेलिब्रेशन?
1: Ask about customized catering menus at reasonable prices, crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
2: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
1: Whether it's dinner with family, chai with friends or your next big event, Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors, experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
3: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरी डे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।
4: 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी, पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल। नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

झटक आता माझी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए कमॉन बेबी किकेट किकेट काटू तेरी टिकेट टिकेट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

0: सा ढंग तेरा मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा
1: yeah.
0: पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा लगे मीठी जैसे शकर शकर आजा चला ले चक्कर चक्कर बाकी के लौंडे पकड़ पकड़ I am the baddest motherfucker
1: yeah.
2: Heartbeat.

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.

0: Badauria, Alexander Noel and Sanvi Meghana all performing live in one spectacular show. Mark your calendars, Sunday, August 9th in Raleigh, North Carolina. Bring your family, bring your friends and be part of the biggest Pan India dance celebration of the year. Don't miss Prabhudeva live in Raleigh.
1: Presented by Fusion Vibes and Lime and Lemon Indian Grill. Media partner Radio Naira, your Indian community media network.
0: Prabhudeva live Sunday, August 9th in Raleigh, North Carolina. One legend, one stage, one unforgettable night.
2: Desire for contemporary and classic jewelry designs to fit every occasion? Khanna and Sons Jewelers has you covered for all your jewelry needs. We craft the purest 22 carat gold and 18 carat dazzling diamonds jewelry with top quality and finish. We offer best value in jewelry along with top craftsmanship and fair making charges. Gold buyback, easy 12 months interest refinancing available. Come, see us for all your jewelry needs at Khanna and Sons Jewelers in Cary, North Carolina. Or call us at 919-388-3838.
3: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरी डे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.
4: 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल.
5: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो. हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हमशक्ल.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM, पक्का देसी, पक्का लोकल।

0: गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड मैं हूं सबके दिलों का चिराग। मेरा नाम है आरजे पराग। 7 से 10 में रहता हूं आपके साथ, मिटाता हूं आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूं आपके मूड को रिफ्रेश। वेल, कैसे चल रही है आपकी आज की ट्यूसडे की शाम? एंड ट्यूसडे की शाम में मौसम भी काफ़ी अच्छा है। बहुत सारे लोग जो है वो घर पर जा रहे हैं एंड वक्त हो चुका है अब आपके काम के स्ट्रेस को एंड लैपटॉप को थोड़ा दूर रखने का एंड ट्यून इन करने का निर्वाणा नाइट। सही कह रहा हूँ ना मैं? तो अब की कुर्सी की पेटियाँ जो है वो बांध लीजिए एंड एंजॉय कीजिए 7 से 10 रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स। मैं हूँ सबके दिलों का चिराग। मेरा नाम है आरजे पराग। मिटाता हूँ मैं आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूँ आपके मूड को रिफ्रेश। एंजॉय करते हैं इस प्यार भरी शाम का ये पहला गाना। कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिएगा रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, क्योंकि आज आने वाला है असली मजा।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 एफएम HD4 101.9 एफएम 1490 AM रेडियो नायरा। पक्का देसी पक्का।

आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक इन चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।

0: वेलकम बैक टू एवरीबडी। एंजॉय किया आपने ये गाना, गाना था वाकई में बेहतरीन। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स। शुरुआत करते हैं आज सुबह की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर से। जी हाँ, वेक और डरहम काउंटी के स्कूलों ने आज सुबह एक बड़ा फैसला लेते हुए स्कूल शुरू होने से पहले ही अपने लंच मेनू से सभी कच्चे सलाद और हरी सब्जियों को पूरी तरह हटा दिया है। अधिकारियों ने ये कदम ट्रायंगल एरिया में अचानक बढ़ रहे साइक्लोस्पोरा इन्फेक्शन के मामलों को देखते हुए उठाया है, ताकि बच्चों को पेट की इस समस्या से बचाया जा सके। एंड सभी पेरेंट्स को भी बताया गया है कि कच्चे सलाद और हरी सब्जियां बच्चों को टिफिन में बिल्कुल ना दे, क्योंकि ख्याल रखना ही पड़ेगा। अगर ख्याल रखने के लिए प्रशासन कह रहा है तो ज़रूर ख्याल रखना ही चाहिए। एंजॉय करते हैं अगला ये गाना।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा पक्का।

0: वेलकम बैक टू एवरीबडी। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स। और मैं यही कह रहा था कि जो भी इंस्ट्रक्शन स्कूल से एंड प्रशासन से मिल रही है उन्हें फॉलो करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि कुछ तो होगा यार, इसके लिए ये सब कुछ चल रहा है। एंड सेकंड चीज़ ये है कि अपराध और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आज दोपहर धर्म के एलिस रोड से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। राज्य के विशेष जांच एजेंटों ने हाल ही में हुई हिंसा से जुड़े एक अवैध शराब ठिकाने और बिजनेस आउटलेट पर छापा मारकर उसे पूरी तरह से सील कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे गैर कानूनी और हिंसक ठिकानों के खिलाफ ये बड़ा क्रैकडाउन ऑपरेशन जो है वो जारी रहेगा एंड ये हमेशा के लिए जारी रहने वाला है, ऐसा अधिकारियों ने कहा है। एंजॉय करते हैं अगला ये गाना।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा मक्का।

0: क्यों थक रहे हो?
1: छीन लूं मैं तेरा पैसा पैसा पैसा, चैन आए लेके पैसा पैसा पैसा, एक ही तो शौक है मेरा।

0: क्या ही मतलब ये गाना जो था वाकई में वाइब सेटर था ऐसा कहने को मैं कह सकता हूँ, आई मीन टू से। और ट्रायंगल एरिया में बीती रात के तूफान से भारी तबाही, गिरे पेड़ और बिजली भी रही गुल। जी हाँ, मौसम की बात करें तो बीती रात आए भीषण तूफान और मूसलाधार बारिश ने पूरे ट्रायंगल एरिया में भारी नुकसान पहुंचाया है। एंड कैरी में एक विशाल पेड़ उखड़कर सीधे एक घर के ऊपर जाकर गिरा है। वहीं रैली की कई सड़कों पर भारी जल भराव देखा गया है। तूफान के कारण कई इलाकों में बिजली के खंभे गिर गए, जिससे हजारों घरों की बत्ती जो है वो गुल हो गई। और मौसम विभाग का कहना है कि आज मंगलवार को भी ऐसे तूफान की पूरी तरह से संभावना है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सबको प्रिकॉशन लेना, खुद की टेक केयर करना बहुत ज़रूरी है और करनी भी चाहिए, खासकर ऐसे मौसम में।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा पक्का।

0: गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे चल रही है आपकी मंगलवार की ये शाम? एंड धर्म हाईवे क्लोजर और रात का नया ट्रैफिक स्केड्यूल, अगर आप आज रात को गाड़ी लेकर धर्म काउंटी की तरफ निकलने वाले हैं तो ट्रैफिक विभाग ने ये नई गाइडलाइन जो दी है वो आप प्लीज़ नोट करिए, क्योंकि सड़कों के मेंटेनेंस और रिपेयर की काम की वजह से आज रात 51 अलग अलग जगहों पर हाईवे क्लोजर और लेन बंद रहने वाले हैं। हाईवे 35/115, हाईवे 7/12, हाईवे 412 जैसे मुख्य रूट्स पर ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा, इसलिए घर से निकलने से पहले जीपीएस मैप ज़रूर देखें। मैंने कुछ जो प्रमुख रूट्स थे उनके नाम आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, इसके बावजूद भी लेकिन ये आपको भी चेक करना है कि घर से निकलने के पहले कहाँ कहाँ के रास्ते बंद हैं एंड किस वे से आपको जाना आसान रह सकता है।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM, HD4 101.9 FM, 1490 AM रेडियो नायरा।

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.